मुझे आज भी पसंद है वो रात का आलम, आसमान से बरसती हल्की ओस की बूंदे, हाथ में चाय का प्याला, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, हल्की धुन में बजता रेडियो और हमारा पसंदीदा गाना।

मुझे आज भी पसंद है वो रात का आलम, आसमान से बरसती हल्की ओस की बूंदे, हाथ में चाय का प्याला, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, हल्की धुन में बजता रेडियो और हमारा पसंदीदा गाना।

0: सुनते रहिए रेडियो निगम 90.4 एफएम आवाज तुमचा।
1: नमस्कार, मी अर्चना ठाकूर, आपण ऐकत आहात रेडिओ नगर 90.4 एफएम आवाज तुमचा।

कभी हंसाता है, कभी नगमे सुनाता है, दीन दुनिया का हाल भी बाखुदी फरमाता है, रेडियो दोस्त की तरह साथ निभाता है। सुनते रहिए रेडियो नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

हर पल जिंदगी का बस धुआ है, न जाने सुकून ये जिंदगी अब कहाँ है। वही सुकून तलाश करेंगे हमारे साथ और सुनेंगे कुछ दिल को छू जाने वाले गाने। सुनते रहिए रेडियो नगर 90.4 FM, आवाज तुमसा।

हर पल जिंदगी का बस धुआं है, न जाने सुकून ये जिंदगी अब कहाँ है। वही सुकून तलाश करेंगे हमारे साथ और सुनेंगे कुछ दिल को छू जाने वाले गाने। सुनते रहिए रेडियो नगर 90.4 FM, आवाज तुमसा।

0: रेडियो नगर 90.4 FM आवाज तुमचा।
1: तुम्ही ऐकत आहात स्नेह वार्ता फक्त रेडियो नगर 90.4 FM वर।

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

अकेले तीर्थ शशि शोर मचाएंगे या आप भी शोर मचाओगे? यदि आपने शोर मचाना शुरू कर दिया तो चोर सारे भाग जाएंगे। अकेला तीर्थ शशि शोर मचाएगा तो तीर्थेश्वर की गली से निकल जाएगा, दूसरे गली में घुस जाएगा। और गली गली के लोगों ने शोर मचाया तो चोर नगर के बाहर हो जाएगा। यहां आपने तय करना है केवल तीर्थेश्वर की गली में से चोर को भगाना है कि हर गली से भगाना है, तो देखता हूं फिर। अभी तक तो केवल मेरे पास 22 गली में शोर मचाने वाले आए हैं। कितने? 22 गली में शोर मचाने वाले के नाम मेरे पास कल शाम तक आए हैं। अभी तो 7 गली बाकी है, देखता हूं कल से कर रहे कम, परसों से ना, आज 20 है ना, 19 है। चलो वार भी याद दिला दियो थे, आज सोम, आज शनिवार है। मैंने कैलेंडर मालूम नहीं रहे, वो पक्षी कभी वो केवे तो हो जावे। थका पंचांग देखता देखता पेपर पंचांग देखने टाइम से नहीं मिलेगा।

परम सद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश्व वंदना विराजमान श्री श्री तीर्थेश्वर शिव जी महाराज साहब देव गुरु धर्म से बंधे हुए श्रद्धालु श्रोता गणेश तीर्थंकर को तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य अर्जित करने के लिए भगवान महावीर की बात करें तो 11,60,000 मास गमन और बाकी सारी साधना करनी पड़ी। तीर्थंकर की मां बनने के लिए कौन से कर्म बांधने पड़ते हैं? सवाल सुना नहीं सुना? तीर्थंकर की मां बनने के लिए कितने मास गमन करने पड़ते हैं? कहीं है कोई जिक्र? गंधर्व बनने के लिए कितने मास गमन करी इंद्रभूति गौतम ने पिछले जन्म में? एक भी नहीं किया है। फिर तीर्थंकर के पहले तीर्थंकर के मां को वंदन करते हैं 56 दिक्कुमारिया और इंद्र भी। तीर्थंकर को बाद में वंदन करते हैं, पहले किसको वंदन करते हैं? नमुत होते तीर्थेर माओयाये रेन कुछ धारिये जगपयो मंगल स चखो नो। लंबी स्तुति करते तीर्थंकर मां की। स्तुति उसमें तीर्थंकर के मां का कौन सा पिछले जन्म का पुण्य है? हमारा सवाल समझ में आया हो तो जवाब समझ में आएगा। जवाब थाके करने को नहीं, मुझे मालूम है, पर यह सवाल भी थाने कभी नहीं पड़े तो यह भी मुझे मालूम है। आया कभी था मन में सवाल? नहीं ना। व्हाट इज द रीजन रामेश्वर? क्या कारण है? तीर्थंकर की मां बनने के लिए कोई तप नहीं है, कोई स्वाध्याय नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। केवल केवल केवल तीर्थंकर बनने वाली चेतना के साथ रिश्ता है। गंधर्व का रिश्ता है। प्रवीण ऋषि ने कोई पिछले जन्म में पुण्य नहीं करे, बस गुरुदेव के साथ रिश्ता है। चंडकोशिक ने पिछले जन्म में क्या पुण्य किए? क्या उस समय अकेला चंडकोशिक ही जहरीला सर्प था क्या? बाकी सारे सर्प बिल्कुल गाय बन करके जी रहे थे क्या? फिर चंडकोशिक के पास ही महावीर क्यों गए? चंदन बाला अकेली दासी थी क्या? और कोई दासिया नहीं थी क्या? फिर चंदन बाला के लिए ही महावीर क्यों गए? उसका जवाब केवल इतना सा है, जन्म जन्म के रिश्ते। किसके साथ? व्यक्ति के साथ। भीष्म पितामह बहुत पुण्यशाली है, सज्जन भी है, भीष्म प्रतिज्ञाधारी भी है, चाहते पांडवों को भी है, लेकिन रिश्ता दुर्योधन के साथ। एक पल के लिए कल्पना करो, यदि भीष्म पितामह का रिश्ता कहीं पांडवों के साथ होता
जानते थे कि पांडव सही है, लेकिन लड़ना किसके लिए पड़ रहा था? रिश्ता उधर है। जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता होता है, गहरा रिश्ता होता है। एक रिश्ता होता है कच्चे धागे का, थोड़ो तानियो कि टूट गया। एक रिश्ता होता है रेशम के धागे का, थोड़ो जोर से तानियो तो टूटने की घनी संभावना। और एक रिश्ता होता है सोने के धागे का। सोने का धागा कट सकता है लेकिन तानने से टूटता नहीं है। तुम्हारे रिश्ते किसके हैं? कच्चे धागे के, रेशम के धागे के, कि सोने के धागे के? खरो बोल लो भक्त, इसो तानियो कि टूट गया। रिश्ते तो है लेकिन थोड़ो सो तानियो, थोड़ो सो मन रा खिलाफ हो गयो कि तू थारो उनमें मारो, थारो मारो कहीं पटे नहीं, तू थारा रास्ता मत है, मैं मारा रास्ता मत है। ये रिश्ते, और एक सोने के धागे का रिश्ता है राजुल का और अरिष्ट नेमी का। एक सोने के धागे का रिश्ता है चंदन बाला का और भगवान महावीर का। एक सोने के धागे का रिश्ता है भगवान महावीर का और सिंधु सुवीर के राजा उदयन का। उदयन ने सिंधु सुवीर में अपने राजधानी के पौषधशाला में बैठ करके एक मन में भाव लाया पौषध के बीच कि धन्य वो नगरी जहां तीर्थंकर महावीर विचरण करते हैं, धन्य वे लोग जिन्हें तीर्थंकर महावीर के दर्शन और प्रवचन सुनने को मिलते हैं, धन्य वे आत्माएं जो तीर्थंकर महावीर के पास दीक्षा लेते हैं। और एक वाक्य मन में आया, यदि तीर्थंकर महावीर मेरी नगरी में पधारते हैं सिंधु सोवीर में तो मैं दीक्षा लूंगा। और उस समय भगवान महावीर चंपापुरी में थे। डिस्टेंस कम से कम 1000 से 1200 किलोमीटर का है। और जैसे परमात्मा ने इस भावना को, उसके संकल्प को, उसकी प्रार्थना को जाना, भगवान महावीर ने श्री संग सहित सिंधु सुवीर के लिए विहार कर दिया। देवी घनी भावना भावता रहो कि घरे गोसरी ना हो, कोई नहीं आवे। एक भावना भाई, एक पल के लिए भावना भाई, और तीर्थंकर महावीर चल पड़े। इसलिए मैंने कहा कि एक रिश्ता था तीर्थंकर महावीर का हृदय राजा का। तीर्थंकर के आत्मा के साथ जब वो तीर्थंकर नहीं थे, तीर्थंकर होने के बाद तो अस्तिल भूत अस्तिल सेतर जमतिल भूत है ना, थकने करोड़ उशीरा तो कवड़िया घनी आ जाए ना। लेकिन तीर्थंकर के पास जिस समय तीर्थंकर का कुछ भी नहीं था, यदि तृष्णा की बात करो तो जिस समय त्रिशला का आत्मा का और भगवान महावीर के आत्मा का रिश्ता बना,
उस समय तो तीर्थंकर के आत्मा का दिवाला निकला हुआ था। क्या दिवाला? दिवाली का सवाल ही नहीं। सातवीं नारकी, चौथी नारकी, तैतीस सागरोपम प्लस 22 सागरोपम, 55 सागरोपम की नरक की यात्रा कर करके वो त्रिशला की आत्मा उस समय में विमला रानी थी, उसके कुक्ष में पहुंचा है। दिवाला था पूरा, था कर्जबाजारी। और उस समय उस विमला रानी ने उस जीव पर अपना वात्सल्य बरसाया है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने महावीर गाथा सुनी है मेरी, लेकिन महावीर गाथा का एक सेंटेंस है, गुरु मिले भटक गया, तीर्थंकर ऋषभदेव मिले भटक गया, आचार्य संभूति जैसे गुरु मिले भटक गया, लेकिन एक माने संभाला। भटकाने वाले बहुत आए, लेकिन उसके बाद महावीर की चेतना भटकी ही नहीं। 6-7 जन्म पहले का रिश्ता, कितने जन्म पहले का रिश्ता, और उस रिश्ते से बंध करके महावीर त्रिशला के पास पहुंचे। कोई भी किसी के पास आता है तो या तो प्यार के रिश्ते से आता है या नफरत के रिश्ते से आता है। मुलाकात बिना रिश्ते की होती नहीं, दुश्मन के भी दोस्त के भी। बिन बुलाए कोई तुम्हारी जिंदगी में आया है, चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, तो किसी जन्म का रिश्ता है तभी आया है। कर्म बंध अलग और रिश्ते का बंध अलग। एक रिश्ते का हिस्सा अनंतानु बंध ही बंध कि 99,99,999 जन्म के बाद भी सोमीर की आत्मा गस्कमाल की आत्मा के पास पहुंची गई वेर वसूल करने के लिए। अभी अंतगण सत्र में आपने सुना है कितने जन्म, कौन सा रिश्ता, वेर का रिश्ता। ये रिश्ता है गंधर का, ये रिश्ता है तीर्थंकर के मां का, रिश्ता है राजुल का, एक रिश्ता है उदयन का, एक रिश्ता है चंदन भाला का। और तीर्थंकर के साथ रिश्ता जो बांध देता है, वाक्य याद रखना, फिर एक बार बोल रहा हूं, रिश्ता जिसके साथ होगा वो रिश्तेदार जहां होगा वहां तुम्हें ले जाएगा। एक छोटा सा सवाल फिर पूछ रहा हूं, माता मरुदेवी ने कौन सी नौकर मंत्र की माला गिरी, कौन सी नौकर से करी, उसने तो एक बखान भी नहीं सुना, सिंगल, उसने तो मोक्ष जाने की भावना भी नहीं भाई। कि उस समय तो धर्म स्थापन होना ही था, भावना भी नहीं भाई, लेकिन उसका रिश्ता तीर्थंकर के साथ नहीं था, ऋषभ के साथ था। और कितना गहरा रिश्ता, कितना गहरा रिश्ता, कितना गहरा रिश्ता।
सब कुछ है, लेकिन मरुदेवी रोती है तो केवल ऋषभ के लिए रोती है। पोता है, पड़पोता है, पड़पोते के पड़पोते हैं, कई दुख को नहीं है। लेकिन बेटे के लिए तड़पती है। ऐसा कहते कि रोते रोते उसकी आंखें, यस, और जब वो जाती तीर्थंकर के दर्शन को जाती है, क्या किसको पुकारती है? बेटे को पुकारती है। उसको तो पता भी नहीं तीर्थंकर किसको कहते हैं, और बेटे को पुकारती है, बेटे को पुकारती है, बेटे के साथ जुड़ी बेटे को पुकारती है। और बेटे को पुकारते पुकारते पुकारते जहां बेटा है वहां पहुंच गई। हाथी के होदे पर केवल ज्ञान हुआ। ये रिश्तों की कहानी है। रिश्तों की लीला अपरंपर है, और वो रिश्ता आचार्य मानतुंग का भगवान ऋषभदेव के साथ जुड़ गया और बेड़िया कट गई। थे भक्ता मर बोलो, नहीं भक्ता मर बोलो, अपना धागा ही नहीं टूटे। हेलो, किरे किरे टूटे आज तक धागा? थे कल्याण मंदिर बोलो, वही कल्याण मंदिर बोले, मैंने तो गुरुदेव सिखाए भी को नहीं, तुम्हारे बोलन को विषय भी नहीं आवे। सिद्ध सिंह दिवाकर कल्याण मंदिर बोलते हैं तो वहां भगवान पार्श्वनाथ प्रकट हो जाते हैं। थे बोलो तो मच्छर भी नहीं जावे दूर। हेलो, अरे थे भी वो सगरम बोलो, मैं भी बोलू, लेकिन आपने वो सगरम सुन दे, धर्मेंद्र तो बाजी में रहे यार, घरों बैठो भी नहीं आवे। बुलाने से लोग आते हैं कि रिश्ते से आते हैं? जल्दी जल्दी जवाब दे सको, थको जानो पहचान जवाब है। घना ही शादी का कार्ड लिखो थे आमंत्रण रंग, घना ही इन्विटेशन देवो थे, जितना करे इन्विटेशन जावे सगा आवे, कौन आवे? उनके से रिश्तों। मुझे एक बार, नाम नहीं लेता हूं, इंदौर में था मैं, और एक व्यक्ति के रिश्तेदार के यहां शादी थी और वो गया नहीं था। मैंने पूछा, अरे आपका वो नजीक के रिश्तेदार उनके घर शादी, हम गए नहीं? बोले मां साहब, उन्होंने पत्रिका भेजी, मैंने पोस्ट से गिफ्ट भेज दिया। मैं पोस्ट से भेजो, मैं पोस्ट से रिप्लाई दे दियो। बराबर है क्या? ₹2009 का चतुर्मास पहली बार चेन्नई था, 2010 का पहली बार चेन्नई था। अब बच्चों के नाम तो आपको तीर्थेश्वर मासा बताएंगे, और उस समय के बच्चे बिल्कुल, उस समय 8 साल के बच्चे थे। निलेश लोढ़ारा बेटा, वंश और वंशिका, और उत्तराध्ययन का कार्यक्रम शुरू करने जा रहा था, और सभा में एक दिन मैंने अनाउंस किया कि आज दिन तक तुमने बहुत प्रचार किया अपने पाप का, शादी का, फंक्शन का, एक बार भगवान महावीर के निर्वाण कल्याण का प्रचार करिए और अपना नाम मत लिखिए। और मैं सेकंड डे में मौन में, और पूरे चेन्नई में होल्डिंग लग गई, बड़े बड़े होल्डिंग लग गए,
और मैंने कहा था कि निर्वाण कल्याण होल्डिंग हिंदी में ही नहीं लगेंगे, केवल हिंदी में लगेंगे, तमिल में लगेंगे, इंग्लिश में लगेंगे। मुझे पता है तमिल जिसको समझती है वो आएगा नहीं यहाँ पर, लेकिन उसके पास मैसेज जाना चाहिए कि भगवान महावीर का निर्वाण कल्याण होंगे। बोर्ड लगे और लोग खोजते रहे किसने लगाए, नाम है नहीं उस पर। मुझे पूछने आए किसने लगाए, मैंने कहा खोजते रहे नाम, पता ही नहीं चला नाम किसने लगाए। फिर जरा कार्यक्रम पूरा हो गया तो मैंने उनको कहा जिसने बोर्ड लगाए, जो जो लेबर था ना लेबर, उसको पकड़ो। लेबर से मालूम पड़ा बापना कहीं ना है, सुनील जी बापना लगाए और गायब हो गए। और उसी कार्यक्रम के लिए पत्रिका छपी थी, मैंने भरी सभा में अनाउंस किया घर घर पत्रिका पहुंचाओ, पोस्ट से नहीं जा करके। और काम किसी ने किया हो तो 8 साल के 10 साल के वंश और वंशिका ने काम किया, उस वेपीर के जितनी बिल्डिंगें थी नेक्स्ट स्टोरेज हर घर पहुंचे। बिल बजानी, जय जिनेन्द्र, हमारे भगवान का कार्यक्रम है, आओ जो। बेल तक हाथ नहीं पहुंचता था तो उड़ा मार मार करके बेल बजाते थे। और वो मजमा जमा कि सवंसरी फिकी हो गई। रियल बात बता रहा हूं, चलने वाले यहां बैठे, रियल बात बता रहा हूं। आखिरी दिन पर साइक्लोन की बारिश। मैंने सोचा आज प्रवीण ऋषि तुम तेरे भगवान, और साइक्लोन के बारिश में नीचे जाकर के देखा मैं जल्दी पहुंचता हूं 1 घंटा पहले, तो मेरे पहले आधा पंडाल भरा हुआ और साइक्लोन की बारिश चालू, और 5:25 का समय होते होते गेट बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लोगों ने ही गेट बंद हो गए। हालत ये थी कि भक्त महादुर्जन ने पट्टारी जगह बची थी, बाकी स्टेज माते लोग बैठा रहा, जगह ही नहीं। साधियों के स्टेज पर सारी बेने बैठ गई कि सूर्योदय के पहले साधी आती नहीं, अनसाधी आए तो उनको बैठने को जगह नहीं। हमारे स्टेज पर तो बिल्कुल मेहरबान की समझो कि तीर्थ शिष्य नाटन नहीं बैठे। बच्चों की वो मेहनत, और अभी भी बताता हूं मैं आपको, जब से मैंने चेन्नई से विहार किया है, ये दोनों बच्चे और बच्चियां वंश और वंशिका, जब भी उनका मन होता है दोनों ही निकल जाते हैं प्लेन से दर्शन के लिए, पहुंच जाते हैं, बस दर्शन करते हैं, थोड़ी देर ठहरते हैं, वापस चले गए। मैं उनको सोचते बच्चा, बोले कुछ नहीं, कहानी किसकी है, रिश्तों की कहानी, थोड़ा शांत कर। एक रिश्ता होता है भक्ति का, एक रिश्ता होता है आसक्ति और स्वार्थ का, और आसक्ति का रिश्ता कभी न कभी दुश्मनी में बदलता ही बदलता है। राग का रिश्ता द्वेष में बदलता ही बदलता है। बोलो जल्दी से, यस। जिस रिश्ते में वासना का स्पंदन है वो रिश्ता एक न एक दिन क्रंदन में बदलता ही बदलता है। कई कहां का रिश्ता दशरथ के साथ कितना क्लोज था, कौशल्या का क्लोज की कई का क्लोज,
कई कई का क्रोध, प्राण प्यारी ही प्राण प्यासी हो गई। भक्ति का रिश्ता भगवान बनाता है और वो राजुल और अरिष्ट नेमी का रिश्ता। अरिष्ट नेमी रास्ते पर से लुट गए तो भी राजुल नेमी के पीछे चल पड़ी। ये रिश्ते की कहानी है। वीरत्वे का गान तीर्थंकर महावीर के साथ रिश्ता बनाने के लिए गाने। आने वाला निर्वाण कल्याण का अनुष्ठान जो दशहरे से शुरू होगा, वो तीर्थंकर महावीर के साथ के रिश्ता बनाने की कहानी। ये विरुद्धी क्या है समझने की जरूरत नहीं है। बच्चा व्याकरण की भाषा बोलता है क्या? हेलो, खरो बोल जो भक्ता में थे। बच्चों जब तक व्याकरण रहा भाषा में नहीं बोले तब तक प्यारो लागे कि शुद्ध व्याकरण में बोले जाना प्यारो लागे। जब तक वो तुतलो तुतलो बोबड़ो बोबड़ो बोले जरा मीठो लागे, जरा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोलने लागे। हेलो, स्वाभाविक हो रही ना? क्यों वह सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज अठाउ आवे और बोबड़ी लैंग्वेज अठाउ आवे। भक्ति कठाउ अठाउ हाँ। 2 अक्टूबर को ऐसे ही तीर्थंकर महावीर के वाणी के पगले हैं। मैं पगले कहता हूं उनको। जैनेश्वरी का अधिवेशन है और किसी भी जैनेश्वरी के व्यक्ति से तुम मिलोगे तो तुमने भक्तामर के चमत्कार के जितने कहानियां नहीं सुनी होगी उतने जैनेश्वरी की सुना देगा आपको। कि जब से जैनेश्वरी शुरू हो गई है मारो यो काम हो गए, मारो वो काम हो गए, मारो इस हो गए, मारो उस हो गए। जैनेश्वरी केवल उत्तराधीन की आराधना, बाकी कुछ नहीं। नगर में भी है क्योंकि उनको एक ही कहा, स्वाध्यायी मत बनना, दिमाग मत लगाना, जैनेश्वरी से प्यार करना। क्या करना बोलो ना, थाने थोड़ी कह रही हो यानी की है। वास्ता आवे नहीं आवे डोंट वरी, भगवान ने सगड़ी भाषा समझे, थाने मन नहीं समझे। भगवान को कौन सी भाषा नहीं आती, सगड़ी आवे। बोले काल अकाल, मैं क्या महावीर तो काल जाइए उनमें काल को आसर हेज को नहीं। महावीर तो काल के परे हो गए। हमारे पूछे मासा वीर फिर पाठ कर देकर मैं 24 घंटा कर लू, उत्तराधीन की आराधना कब करनी 24 घंटे करना। कितने घंटे? 24 घंटे मासा सज जाए असज जाए। मैं क्या चले जा कॉलेज में, टीचर के पास सीखना होता था डिसिप्लिन में सीखना होता है। हेलो, टीचर के पास सीखना हो तो टाइम टू टाइम, और माँ का नहीं सीखना होशिला तो यूनिफॉर्म ड्रेस कोड टाइम टेबल। हेलो, अठे भोजनशाला में जिमना होशिला तो टाइम टू टाइम है, माँ कहीं जीवन उछला तो
तब महावीर के पास कस्टमर बन के जाना कि भगत बन के जाना? कस्टमर के लिए टाइम टू टाइम है, भगत के लिए एनी टाइम। सगड़ा साधु साध्वी महाराज से नाराज है। हाँ, कारण बता रही, बता रहे, सज जाए ऐसे जय मानो को नहीं ना।

many of our chogude barabar ko nahi aur mujhe lagta hai ki tumne galiyan chogde de kar ke deni shuru kari na bas aaj ra ekas pachkan jhagadta na mode dekhne jhagad lo mode dekhno disha dekhni बिल्कुल पूर्व दिशा उत्तर दिशा ईशान कोण में मुंह करने झगड़ लो झगड़ो कौन तय दिशा में झगड़ो कभी भी अन भगवान की भक्ति करने टाइम देख रहे हैं वाह रे वाह मैं हमेशा कहते हुए मैं पुराने बात है एक आदमी को कुत्ते ने काटा रात को 11 बजे कितने बजे 11 बजे बेचारा गया अपने डॉक्टर के पास हम डॉक्टर ऊपर नीचे ओपीडी ऊपर डॉक्टर बेल बजाए डॉक्टर ने ऊपर से खिड़की बोली बोले क्या है रे बोले कुत्ते ने काटा बोले तुझे टाइम पता नहीं कि मेरा क्या है 10 बजे के बाद मैं मिलता नहीं हूं उस आदमी ने जवाब दिया टाइम मुझे पता है कुत्ते को पता नहीं इसलिए क्योंकि परसों को निवृत्त शुरू हुई ना भगवान की भक्ति शुरू करेंगे उन पीछे मैंने आई ने पूछी ला मार साहब घर में वह माला गिननी है किस समय गिनी किस समय नहीं गिननी आओ जो मुद्दे पूछने आओ जो मती सिंपल जवाब है एनी टाइम 24 आवर्स मासा कोणता दिशा मुंडो करणे फिरणं सगळ्या दिशा भगवान आहे लोगोस उज्जय करे पूरे लोक में उनका उजाला है कौन सी दिशा में उनका उजाला नहीं और कौन सी दिशा में उनके वाइब्रेशन अमंगल है हेलो सगळ्या दिशा में उनका मंगल है ना पन भक्ति का रिश्ता हो तो 24 आवर्स और अनुशासन का रिश्ता हो तो टाइम टू टू टू अपॉइंटमेंट बिना अपॉइंटमेंट की मुलाकात किसके साथ एक बार मम्मी ने मिला ना अपॉइंटमेंट लेने हेलो नहीं ना तो मम्मी से गया भी तो तीर्थंकर है कभी भी मिलो तो 24 आवर्स तीर्थंकर तीर्थंकर ही है भक्ति भक्ति ही है इराने वे नाना जी प्रवीण ऋषि सगड़ी परंपरा निभावे इसको नहीं निभाता मजा बताओ था ना अगले ये सगड़ी चर्चा में बाजू ने करे मारा कहना है ना कोई नहीं बोले इंदौर सम्मेलन में सगड़ा चर्चा करता था इन बातें मुझे किसी ने पूछा नहीं मुझे गौतम ने इनका जवाब दिया मैंने कहा मुझे पूछो तो जवाब दो ना जितेंद्र मुनि ने पूछा मुझे मैंने उनको उत्तर दे दिया वो सब बोले ओके ठीक है मैंने पूछे ही को नहीं है नहीं नहीं मैं मैं मैं महावीर सदगुरु गुरु हूं 21 सदरी कोणी में थाने मालूम कोने मैं हमारा क्लास में एक सवाल दोता रही हूं यदि आज महावीर होते तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते कि नहीं करते आज महावीर होते तो कौन सी भाषा में कहां बैठ करके बोलते हो स्थानक में उपासना में हेलो मुझे पूछोगे तो मेरा जवाब तुमको हजम नहीं होगा मेरा जवाब सीधा रहेगा मैं कटे न कटे टीवी सीरियल में जाता और वे इसी टीवी सीरियल चलाता कि वो फिर रिकॉर्ड ब्रेक हो जाता सब मन मालूम है तेरे हजम नहीं मिलाऊ

0: आज के कितने 23, 24, 25
1: 24
0: आज के 24 उपास उगे सुने पचास भक्तम भक्ति भी हम प्यारम स्वस्नम खैमं सैमं सत्सं गरेनम महत्ता गरेनम स्वसमयां वत्या गरेनो ओसरे ओसरे ओसरे 24 उपास के पचकान लेने वाले को
2: धन्यवाद।
0: मास कमन की ओर कदम बढ़ाने वाले को
2: धन्यवाद।
0: एक ही परिवार के एक चौमासे में 2 मास कमन करने वाले गांधी परिवार को
2: धन्यवाद। आज
0: आज के एकासन एकासन उगे सूर्य एक समय के उपरांत तीन आहार के पचकान स्वासनम खैमम सैमम सत्सं गरेनम महत्ता गरेनम स्वसमयावत्यागरण ओसरे ओसरे ओसरे। एकासन वाले अपने आराधना स्थल पर उपयोग रख सकते हैं। आज का आयम्बेल उगे सूर्य आयम्बेल का मिलने वाले वेणम सत्सागरण महत्ता गरिणम स्वसमयावत्यागरण ओसरे ओसरे ओसरे। आज का उपवास उगे सूर्य अवदम्बत का मिति व्यम व्याहरण स्वासनम खैमम सैमम सत्सागरण महत्ता गरिणम शुभ समया वत्या करण ओसरे ओसरे ओसरे। एकासन आयम्बेल उपास करने वाले को बाबा से चेन्नई के परिवार है।
2: आज राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य आनंद सिंह जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन मंच पर विराजित उपाध्याय प्रवर पूज्य प्रेम सिंह महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। आज हमारे बीच चेन्नई छत्तीसगढ़ से काफी भक्तजन आए हुए समर्पण चतुर्मास समिति उनका स्वागत करते हैं। साथ में ही आज पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत संघ संचालक श्री नाना साहेब जी जादव ये भी हमारे बीच उपस्थित है। साथ में पश्चिम महाराष्ट्र सह प्रांत प्रचारक केदार जी कुलकर्णी दक्षिण जिला संघ संचालक वाल्मीकि जी कुलकर्णी वे भी हमारे बीच उपस्थित है। मैं उन्हें आगे आमंत्रित करता हूं और उनका समर्पण चतुर्मास समिति की ओर से हम उनका सम्मान कर रहे हैं।

और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: ज्यादा वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।